0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ,
2: इस विधि से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा चारों के लकी और लवली बच्चों को देख रहे Hey.

क्या से क्या बना देते।

Wonderful.

are settled.

sad for

सर्वशक्तियों से

0: सर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा मधुबन

servicio. Sé que te napiares, amigo. Mato vane vasi. Que se va con. Deca. Sapato cuchote. Lo que vi que tiene. Concha la. जैसे मशीन चल रही है तो मधुबन निवासियों की ये सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। मधुबन निवासी चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठ के मुरली नहीं सुना, लेकिन एग्जाम्पल बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों से चाहे फॉरेनर्स चाहे भारत के भी आते हैं और कहाँ भी देखो मधुबन वाले जाते हैं तो मधुबन के हर आत्मा को बहुत रिकॉर्ड से देखते हैं। सबसे मुख से निकलता है मधुबन से आई है मधुबन से, तो मधुबन वाले कम नहीं है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इसका

biết nước vị này cho sợ ta. I have to say.

钱吗？

Sunday. So

Fremd die Märchen.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है। वही तीन बातें बिना बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ वा व्यर्थ सोचना, अशुभ वा व्यर्थ बोलना और अशुभ वा व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना। अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते में देखा तो बोल और कदम में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करें। दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो मुख पर। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्यों पाप दादा को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। पाप दादा तो उस समय ये सोचते के साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार निराकारी है। बिल्कुल सभी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उसकी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अपने ब्रह्मांडों में भी

Siempre va.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप भी

家中废了，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें say

Jesse.

sit up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन दिन दिन अभी जैसे See.

0: adhesiva. Ceri orcelazioni. Uscabias. Jesse Pajero Cabias. Karti karti. Hushar ho gayi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।